0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के

चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी समाचार रिले करी सुनाइलु राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दिल्लीरु। आकाशवाणी बारिपदा निवेदन करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदनार प्रथम अर्घ्यर शिल्पी तृप्ति दास, कंठरे निमाई बानार्जी रचना।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् पञ्चोत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे अगस्त मासस्य सप्तमदिनांके भारतस्य स्वातन्त्र्यसंघर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत् सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्
1: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः पादोनचतुर्विंशतिसहस्रकोटिरूप्यकाणां परिव्ययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम् नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम् मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धन योजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों

0: इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।

0: प्रत्येक वर्ष मनाया के हथियार किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का

0: प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हिंदी समाचार रिले करी सुनाइलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारीपदा कार्यक्रम सुनछंती एफएम बैंड रे 102.9 मेगाहर्ज जगे समय सकाळ 8:15 आरंभ करूछु गीतांजलि। आज के परदेशी बंधुटी हातठारे डाके धीरे धीरे सपन रे छुई जाए वास्तव रे मन मोहिनीए प्रीतिर मधुर लग्न रे उभा हेनीति केते सपन देखाए मो गांरु हृदय पर्यंत यात्रा तार लंबी थाए केतेबेले कानरे मो चुपी चुपी कही जाए मु तुमको भल पाए मु तुमको भल पाए।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत भी आप सुन रहे थे, लापता लेडीज फिल्म से। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था, राम संपत ने धुन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: लव जंजुआ और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। मयूरपुरी का लिखा हुआ, प्रीतम का संगीत था और फिल्म का नाम था सिंग इज किंग।
1: शो कदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रे इश्क में बढ़ जाते पूरे दबंग अंदाज में दबंग, दबंग, दबंग, दबंग। और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओके टिको है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शांतनु मोहित्रा और फिल्म का नाम परिणीता।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आइए आप सुनते हैं रांझणा फिल्म का ये गाना। ए आर रहमान और साथियों की आवाजें हैं।

रहमान और साथियों की आवाज़ों में ये गाना आप सुन रहे थे। रांझणा फिल्म से इरशाद कामिल के बोल थे, ए.आर. रहमान की तर्ज थी। भारतीय साहित्य आकाश में एक ऐसा नक्षत्र, या कहें कि साहित्य संगीत कला और दर्शन के आकाश में एक ऐसा नक्षत्र जिसकी आभा युगों युगों तक हमारा पथ आलोकित करती हैं, वे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय साहित्यकार, शिक्षाविद और मानवतावादी गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी लेखनी से केवल शब्द ही नहीं रचे, अपितु संवेदनाओं का एक विराट संसार रच दिया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी अनुपम देन है। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने ऐसी शिक्षा का स्वप्न साकार किया जिसमें ज्ञान के साथ संस्कृति, संस्कार, सृजन और प्रकृति का अद्भुत समन्वय है। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं गीतांजलि, गोरा और चोखेर बाली, काबलीवाला और पोस्टमास्टर आदि। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित अमर रचनाएं रविन्द्र संगीत विश्वभर में प्रसिद्ध है, जिनमें शब्द, संगीत और संवेदनाओं का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। आज कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

कहानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, एकला चलो रे, यदि तोर डाक शुने क्यों ना आसे तब एकला चलो रे। अमिताभ बच्चन और साथियों के आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। इस रचना को रचित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई।

0: आकाश का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँगते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया। वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला। संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: कहां तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।
0: आहा, आई मिलन की बेला देखो आई बनके।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतिल शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतिल शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतिल शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतिल शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

0: या आसमां को बढ़कर राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का
1: जी। ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी, और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने

फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया, जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

जी ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जी ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने का जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस 2 सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाखोर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज़ फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज़ पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल, जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिन के साथ, और जो लिसनर्स है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है, और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा, चाहे वो यहाँ का डल लेक हो, यहाँ की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत

0: पानी आया था, तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
1: बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है, और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा।
0: हमें

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटॉक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैडम।
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी शैली है ना, दिन में आता है गीत माला।

0: साथ में वो उठाया ये।
1: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
0: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। सावन महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
1: जी,
0: पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, हजारा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर के आवाज में सिंदूर फिल्म।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटाज छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?

0: रात तो हो रही थी बरसात।
1: अच्छा,
0: खूब बरसात हुई रात को। तो अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
1: हाँ,
0: हम तो खेती किसानी करते हैं।
1: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
0: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
1: आपके खेत में कौन सी फसल है?
0: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
1: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
0: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
1: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
0: जी, बढ़िया होने वाली है। बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
1: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
0: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
1: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात की
0: हाँ, बहुत
1: पानी को
0: सुंदर लग रहा है।
1: पाकर।
0: अभी मैं मक्का खेत में कॉल किया मैंने।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
0: हाँ दीदी, मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ मैं तो।
1: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे
0: करते
1: भरे
0: हैं
1: खेत
0: दीदी।
1: की और उन्हें कहीं भेजते हैं अब कि देखिए ऐसी
0: जी
1: हरियाली है?
0: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
1: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
0: हाँ, उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है। हमारे रेडियो से दोस्त जुड़ रहे हैं, जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
1: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है,
0: जी,
1: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है, तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
1: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पर थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते, ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस। इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: सच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना?
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का, धान, सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा, तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है उसमें लाते हैं गट्टा बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो विविध भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैं।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा गोपाल ओझा ग्राम ककवासा जिला गुना से बोल रहा हूँ मैडम जी। आपसे तो पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमाल सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में? वहीं रहते हैं आप?
1: यहाँ लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं, अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर? कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते हैं, चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है जी वाला।
0: अरे कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ मुझे, मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए मान लिया हमने, ठीक है सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी जी जी
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता है दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी एक बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कांवड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का गीत सुनते
1: दीदी
0: हैं?
1: मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: ये वॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निसुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी। बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए।
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे।
1: कैसा है? भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर? झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
0: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: उसके बाद जो नारल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: उसको पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा,
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है भीमाशंकर पूना बम्बई कोकण वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
0: समझ गई मैं।
1: इधर बोले तो ये माथे पे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
1: रहता है। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है रीत रिवाज,
0: वो
1: चलते आने वाला रीत रिवाज से चलता है, और उसकी मर्जी बिगर कुछ होता नहीं।
0: क्या बात कही।
1: मराठी मध्ये एक अभंग है, अरे अरे माणूस तू वेडा का खोळा रे, देवा पुढे माणूस पाला पातोळा रे, घडी घडी नाही कुणाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिला।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घडी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से।
1: तुमको बोलू क्या, सिलोन बाल का रेडू था, उसके पास वी द्वारती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे
0: जी।
1: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, हमारा सवा छेकु भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं।
0: बहुत सुंदर।
1: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
0: जी। बिल्कुल। तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत, हमें कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साईं बाबा का।
0: अरे वाह, कौन सा?
1: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा।
0: बहुत सुंदर। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी पीरियड क्या कह रहे हैं आप?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में, लाइव में, ईमेल में और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग, और गीत के बोल है मस्तों का झूल और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल किया है, सूर्य की रोशनी है, बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं पूजा नारायणिया। आइए आपको इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत झांझरिया एल्बम से ये गीत है। हंसराज हंस ने इस गीत को गाया है। इब्राहिम अश्क के बोल हैं। अली घनी ने इस गीत को कंपोज किया है।

रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी की जबान इस गजल एल्बम से पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की आवाजों में। संदीप गुप्ते का लिखा गीत महेश खानोलकर का कंपोज किया हुआ।

0: जिंदगी की जबां। इस एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की आवाज में। ये गीत
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: आ रही है विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला गीत एल्बम घूंघट से। पंकज उदास ने इस गीत को गाया है, संगीतबद्ध भी पंकज उदास ने ही किया है, जमीर काजमी के लिखे बोल हैं।

उर्दू मॉडर्न गज़ल मुकेश इस एल्बम से आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश की गाई ये गज़ल जिगर मुरादाबादी की रचना है, मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
3: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में द लेटेस्ट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से ये गीत, सुदर्शन फकीर का लिखा ये गीत है।

अगला गीत नुसरत भद्र का लिखा, इस गीत को गाया है साथ ही संगीत बत किया है सोनू निगम ने। एल्बम का नाम है चंदा की डोली।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गीत हुल्ले हुल्लारे इस एल्बम से आपको सुनवा रहे हैं, राजेश्वरी सचदेव की आवाज में, नक्शलयालपुरी का लिखा गीत, अमर हल्दीपुर का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग में अगला गीत द खजाना कॉन्सर्ट गजल्स इस एल्बम से आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है, साथ ही संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: त्रिलोक लुम्बा का लिखा गीत है, संगीत भी उन्हीं ने दिया है। रागेश्वरी की आवाज है, एल्बम का नाम दुनिया।

इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं तुनक तुनक तुन दलेर मेहंदी इस एल्बम से। इस गीत को गाया है, साथ ही लिखा है दलेर मेहंदी ने, रवि पवार ने संगीतबद्ध किया है।

दलेर मेहंदी का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे तुनक तुनक तुन इस एल्बम से, और इसी गीत के साथ रंग तरंग का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूँ बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम।

0: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
1: केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
3: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर शोक अदाओं के।

0: दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए
0: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: आ रही हैं विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन भले ही हमने किया हो, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा खेल आप सभी के साथ गीतों के साथ हम खेलते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए आज के गीतों की झलक साझा आपसे करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। ये है इस सफर की खास बात। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ देते हैं आज की इबारत यानी टेक्स्ट। सावन के झूले पड़े भीगी भीगी रातों में भी पिया अनजान है सपनों की सूखी फुलवारी, तन में पिया दिन भर मुझे यूं सताए, दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाए, दर्पण में देखूं जिसे वो सपने सच्चे लगने लगे, शाम सवेरे दिल में तू रहता है, तुझसा दिल का हंसी पहले देखा कहाँ, दिल ने कहा नहीं माना और एतबार कर लिया, यानी कहा ना माना और दिल ने एतबार कर लिया, बेखुदी में आ गए पास हम और अब ना होंगे जुदा। तो ये थी हमारी आज की इबारत। इनसे जुड़े कई कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले पड़ चुके हैं लेकिन प्रेमी पिया अनजान है और दिल के सपनों की सूखी फुलवारी ने उम्मीद और अरमान को निराशा से भर दिया है, फिर भी दो नैनों ने जो ख्वाबों की महफिल सजाई है उसमें प्यार की रोशनी धीरे से जगमगाई है जिससे दिल को एतबार हो गया कि अब वो फिर से जुदा नहीं होंगे। सूखी फुलबारी यानी निराशा के बावजूद नए सपने सजाना, यानी कि मन में आशा रखना, मन की अदम्य प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं अनजानेपन के बाद भी दिल का एतबार करना प्रेम की सहज और पवित्र प्रकृति को उजागर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की बारिश का एक अजीब सा स्वभाव है, यह हमेशा बाहर नहीं बरसती, अक्सर भीतर भी भिगाती रहती है। झूले डलते तो हैं पेड़ों पर लेकिन झूलता मन है, दर्पण में चेहरा अपना दिखाई देता है मगर आंखें किसी और की परछाई ओढ़ लेती है, ख्वाब भी बड़ी खामोशी से आकर दिल के आंगन में बैठ जाते हैं और एक अनकहा नाम पूरे दिन सांसों में गूंजता रहता है। फिर एक दिन दिल बिना किसी दलील के यकीन कर लेता है कि मोहब्बत का रास्ता मंजिल से नहीं इंतजार से होकर गुजरता है। सावन हर साल लौट आता है यह याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, उन्हें छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कितनी सुंदर बात आपने कही है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये सावन जो है ऋतु नहीं, हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है। झूलों की रुनझुन, भीगी रातों की नमी, दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल, सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो पहले एहसास बनकर उतरता है फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहाँ विरह भी मधुर है, प्रतीक्षा भी सुंदर, क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहां मिलन से पहले स्मृतियां साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है, एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के साथ साथ महका

आता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ बिल्कुल। तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है इस सफर का आपके लिए, जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है आर डी बर्मन ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक

0: चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ
1: कहाँ
0: से
1: के हुजूर।
0: हुजूर।
2: वो कॉमिक क्रिएटर हैं। अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो, या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है, हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली है, लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी। क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहां से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी, तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से इन्हें इंतजार है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं। ऐसी ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियां और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके गांव, मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे, या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं? क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियाँ, अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो? तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए। तो आइए सावन के महीने में आज के कार्यक्रम में अपने मन को टटोलते हुए खोलिए उन यादों का पिटारा। बता दीजिए कि आज का कौन सा गीत आपकी प्यारी याद को ताजा करता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं।

अब देखिए सावन की भीगी भीगी रातें प्रेम की दिल में दस्तक दे रही हैं। ये दस्तक सुनकर किसी का साथ याद आने लगता है तो कभी किसी से हुई प्यारी सी मुलाकात याद हो आती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं, आज का सुरीला सफर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुली गाड़ी में हवाओं के साथ बातें करते हुए फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हों। गानों के मुखड़ों को इबारत के रूप में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं, बस इन गानों के बजने का इंतजार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया है। इतना जरूर है कि सभी गाने सभी के पसंद के होंगे, तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल, एक श्रोता कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुरीला सफर में सावन छाया हुआ है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सावन सभी मौसम का राजा है। गर्मी की तेज जलन से तन मन जब व्याकुल हो जाता है तब मन ठंडक और बारिश की कामना करता है, और बारिश की पहली फुहार से तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। चारों ओर मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है ऐसा लगता है, और ऐसे में हम जैसे संगीत प्रेमियों के मन में सावन के कई गीत उमड़ने लगते हैं। तो इन्होंने एक गीत लिखा है, सावन का मेरा प्रिय गीत है, रिमझिम के गीत सावन गाए। क्या बात है, अभी तो ये गीत हमने आपको सुनवाया। एक श्रोता कहते हैं कि लगता है कि घटाओं से सजे मेघालय में रिमझिम फुहारों वाली गीतों की मालाओं से हो रही है आज हमारी मुलाकात। पिया मिलन की उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदे इबारत में दिखाई दे रही है, और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन पिया अनजान है कि कभी जल सकता है जिया भीगी भीगी रातों में। ये तो पता तब पता चलेगा जब दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाएंगे, तब वो भी गुनगुनाने लगेंगे, नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई, देखूं तुझे जिसे सुबह शाम, ऐसे ही कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है, यही कि शाम सवेरे दिल में तू रहता है, फिर क्या बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम,

गई पास हम, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ जाने का समय होते ही पास आ गए हम, क्या बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने हमारी ही इबारत को अपने अंदाज में लिख दिया है, और सावन में रिमझिम फुहारों की बूंद में जब पिया की याद आती है और हसीन ख्वाबों में डूब जाते हैं, मिलन की आस जाग उठती है कि तुम आ जाओ और फिर जुदा ना होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत तड़पाते हैं, और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को और बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक की बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपना पिया मिलन की पुरानी यादों को ये मौसम जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। बिल्कुल ये मौसम है ही प्यार का। श्रोताओं, जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन्हें याद रखते हुए आप हमें संदेश भेजते रहिए, हमें आपके संदेशों का बेसब्री से रहता है इंतजार। आपकी ये अनमोल यादें हम तक उस वक्त की भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू पहुंचा रही है, सावन की फुहारों के साथ।

0: करता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें, आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
1: अनुरूप भावे नीट एवं अन्यान्य प्रसंगरे विरोधीक प्रबल हट्टगोल जोगु राज्यसभा मध्य आज मुलतवी होईछि। मध्याह्न 12टा परे राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन गृह परिचालन करिबा आरंभ करिबा परे प्रश्नकाल कार्य आरंभ करिथिले। हट्टगोल मध्यरे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एक प्रश्नर उत्तर देई कहिथिले रेल परिचालनारे कवच ओ सिग्नलिंग प्रक्रिया कार्य जारी रहिछि, तबे संपूर्ण भावे से तांकर उत्तर हट्टगोल मध्यरे रखि पारिनथिले। पूर्वरु गृहरे प्रबल हट्टगोल जारी रहिबारु अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन गृहकु आसंता सोमवार दिन 11टा पर्यंत मुलतवी घोषणा करिथिले। ब्रिक्स देशमानंक मध्यरे स्थिर नवसृजनात्मक एवं निरंतर विकास भित्तिक शिक्षा व्यवस्था गठन पाई सहयोगक अधिक सुदृढ़ करिबा उपरे केन्द्र शिक्षामंत्री प्रहलाद जोशी गुरुत्वारोप करिछन्ति। भुवनेश्वरे आयोजित ब्रिक्स शिक्षामंत्रीमानंकर त्रयोदश बैठकरे श्री जोशी कहिछन्ति महामारी, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु ओ द्रुत वैश्विक परिवर्तन भळी आह्वानर मुकाबिला करिबाकु शिक्षा व्यवस्थाकु अधिक सक्षम करिबा आवश्यक। सहयोग ओ स्थायी विकास पई स्थिरता नवसृजन प्रसंगरे आलोचना करी मंत्री कहिछन्ति ब्रिक्स देशगुडिक परस्पर अनुभूति, ज्ञान, सफल अभिज्ञतार आदान प्रदान माध्यमरे शिक्षा क्षेत्रर सहयोगकु नूतन दिगंत मिलिपारिबो। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता समयरे लोकंक विकासकु प्राधान्य देउछि बोली मंत्री कहिछन्ति। बैठकरे प्राक शैशव जत्न ओ शिक्षा, दक्षता विकास, गवेषणा उद्भावन, योग्यता ओ शिक्षागत नेतृत्वर आपोष मान्यता समेत प्रमुख प्राथमिकता उपरे विचार विमर्श हेउछि। बैठकरे 11टी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रर 8 जन शिक्षामंत्री ओ 40 जन वरिष्ठ पदाधिकारीक समेत 200 रु अधिक प्रतिनिधि अंशग्रहण करिछन्ति। एनडीए नूतन भाव जोगद विभिन्न सांसद मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सका बासभवन में साक्षात करते एनसीपीआई और शिवसेनार यह सांसद प्रधानमंत्री को भेटा पर संसद परिसर में गणमाध्यम कथबार्ता कर शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाकमारे कहते संसद में बारंबार घटुवा हट्टगोल को नहीं प्रधानमंत्री चिंता प्रकट करते से कहते निरंतर हट्टगोल जो नूतन भाव निर्वाचित तथा तो प्रतिभावान सांसद मैंने मत गृह प्रकाश करने सुजोग पाउना। एनसीपीआई सांसद शताब्दी राय कहते एनडीए जड़ित समस्त सांसद को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वागत करते राष्ट्र निर्माण में सांसद मैंने किपर निजर अवदान रखिपारे से दिग्वे गुरुत्व दिज्व। पाणिपाग भारतीय पाणिपाग विभाग सूचना अनुसार ओडिशा समेत कर्णाटक उपकूलवर्ती अंचल, पूर्व मध्यप्रदेश, पूर्व राजस्थान, केरल, माहे और कर्णाटक दक्षिणांचल तथा देशर उत्तर पूर्वांचल प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। वृष्टिपात जम्मू और काश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आखपाख अंचल जारी रहिबार अनुमान कराउछि। मुख्य संवादगुड़िक पुणिथरे हस्तंत जीविकार माध्यम हो सामग्रिक विकास एक शक्तिशा उपकरण कहले राष्ट्रपति जितिय हस्तंत दिवस अवसर में 22 जन कले पुरस्कृत। संसदर अनुमोदन लाभ कला क्षुद्र अणु और मध्यम उद्योग विकास संशोधन बिल 2026। विभिन्न प्रसंगे विरोधी हट्टगोल जो राज्यसभा आज मुलतवी एवं ब्रिक्स राष्ट्र मानक मध्ये स्थिर नवसृजनात्मक एवं निरंतर विकास भित्तिक।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस, पार्लियामेंट पासेस एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल टू एड्रेस पेमेंट डिलेज एंड सिंप्लीफाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes across several parts of northern India. In chess, Grandmaster R. Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha enter women's singles semi-finals of Korea Masters Badminton Tournament in Assam. Parliament has passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday.

0: 10 crore rupees as preliminary assistance for 22 flood affected districts, with the highest allocations going to Baleswar, Jaspur and Bhadrak districts. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In Keralam, IMD has predicted heavy rainfall across the state. More from our correspondent.
2: IMD's heavy rain alert is continuing in Kerala for the third consecutive day. 8 of the 14 districts are under orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall. The remaining 6 districts are under yellow alert with a chance of isolated heavy rain. The high range areas have not received heavy rain today, bringing some relief. At the same time, parts of Kozhikode and Wayanad are experiencing heavy rainfall, while other districts are witnessing moderate rain. The ban on fishing activities continues along the coastal areas. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: In sports, Indian Grandmaster Pragyananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javohir Sindarov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. In badminton, Indian shuttlers Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha have stormed into the women's singles semi-finals of the Korea Masters in Asan today. Rakshita defeated compatriot Tanvi Sharma in the quarterfinals. She will now face fellow Indian Ashmita Chaliha in the semi-finals. Ashmita advanced to the semi-finals after stunning top seed Hina Akechi of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया समाचार विस्तार से संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया एक रिपोर्ट
4: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा

0: सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम तो है के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्र हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
3: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
3: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की

0: आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
0: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलत फहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर आया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से

0: तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर हैं।
4: अगर अमेरिका

0: अभी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजे के वॉइसेस छिपा दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी

0: सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
2: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: सदाबहार नगमी की ये आखिरी प्रस्तुति है लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत है आया सावन झूम के। इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग, उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार, हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन, जिसमें बसी होती है।

0: भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों की मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले, जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम, जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम, आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुन्ना बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: बेलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी,
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूं मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है
0: जी,
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मरतबा या दो मरतबा।
0: जी दिया जी, देखिए ना सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूमकर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है,
0: और सावन में झूला झूलना ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम। हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार,
0: हाँ जी,
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे
0: अच्छा,
1: और बहुत मजा आता था
0: जी। अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम। मैं और मेरी कानों में की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा दिया जी, आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ,
0: कहाँ से?
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल,
0: जी
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे जी। यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: सावन तुलक तुलक जाए मन, भीगी आगे इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ला ला ला ला ला ला लगी स्मिटन जी।
0: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया, तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि

0: स्वागत है। ये बताइए
1: जी
0: कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ,
0: अंबिका जी, आपके और क्या-क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी,
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती,
0: अच्छा
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को, तो
0: जी,
1: वो चलाती। मेरा
0: अच्छा। तो आपके परिवार में और कौन-कौन है?
1: बेटा, मैं, तीन जन है, हम बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती, चंदा
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा कर के देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। पर जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते। जी
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रही हैं, और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए, आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुळे।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं। तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी। अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी। वाह, क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई जुई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके हैं कौन में से हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हम

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। पहली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए
1: हाँ
0: कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हों तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती
1: हाँ हाँ
0: है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनते थे, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी।
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है। अब
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित तटानी बोल रही हूँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप

0: रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात
1: तो
0: है, मतलब नाइनटीन सेवेंटीज
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था और
0: जी
1: 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले तेंगे मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग
0: बात
1: ही
0: है।
1: मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजा कर और एक एक करके तेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी मेरी माँ लोग चाची लोग उन लोग सब, वो हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज हरा लाल, मतलब एक
0: क्या
1: अलग ही
0: बात,
1: छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना?
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली, सारी
0: जी
1: बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके, मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब
0: जी
1: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद, और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज ये, और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा, और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल, हमने भी
1: मतलब
0: इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी, अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
1: बिल्कुल
0: खरीदेंगी?
1: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम
0: जी
1: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं,
0: क्या बात है,
1: और आप सोच नहीं सकते, और मेरी एक लौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे, और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था,
0: क्या
1: राखियां
0: बात है
1: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
0: जी,
1: के धागों से,
0: हाँ जी
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां,
0: जी
1: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
0: क्या
1: उसको
0: बात है,
1: प्राइज मिलता था,
0: क्या बात है।
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लर पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
1: बिल्कुल,
0: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
1: बहुत बहुत मजा
0: जी
1: आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
1: हाँ
0: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं,
0: जी
1: और देवर देवरानी लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं, तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
0: जी
1: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है,
0: क्या बात है,
1: बस छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं सावन के महीने

0: सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता।
1: नहीं बिल्कुल, आप याद
0: कीजिए। तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है
1: जी।
0: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए ये वाला गाना आप चला दीजिए।
1: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, आपका पलका मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी, जी,
0: तो अर्चना
1: आपको
0: जी,
1: भी बहुत बहुत बधाई हो, सावन की
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और

0: बहुत सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है,
0: जी
1: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की
1: मावे
0: या
1: की?
0: मावे की?
1: नहीं, मावे की,
0: उसमें कुछ भी मिलाती
1: मावे
0: नहीं
1: की
0: है, सूजी भी नहीं मिलाती ना?
1: नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
0: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है।
0: जी
1: हाँ,
0: बहुत।
1: तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से
0: जी
1: ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और खाना
0: जी
1: खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो
0: क्या
1: वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है। यानी
1: तो
0: देखिए,
1: बड़े हो गए हैं, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में
1: जी
0: सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि
1: हाँ
0: शादी हो गई, दूसरे घर जाएंगी, तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, पर हाँ, अभी जैसे गुजिया का टाइम है, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि
0: जी
1: उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना, तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
0: बिल्कुल
1: दो
0: सही बात
1: लेडीज भी
0: है।
1: हैं, हाँ दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
0: क्या बात है। यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और
1: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी
0: जी
1: लगती है ना,
0: जी
1: कि मैं क्या बोलूं, ये
0: जी
1: पूछिए मत।
0: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
1: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब
0: जी
1: मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी।
0: जी
1: 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
0: जी आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
1: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को देखना है, तो हो नहीं पाता है।
0: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज़। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
1: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं, मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस,
0: और वहां
1: उस
0: पर
1: समय और कुछ नहीं रहता
0: जी
1: था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है, और जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
0: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती हैं, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियाँ सब होती हैं, तो आप उनमें से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खरीदा करती थी उस समय?
1: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
0: क्या
1: था।
0: बात है। हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है,
1: किचन में
0: तो
1: हाँ,
0: जी
1: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है, पकड़ कर वो, जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले
0: जी
1: आते थे,
0: जी
1: अब ये छोटे छोटे मिलने लगे, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना, तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
0: क्या बात है। यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
0: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है। चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहां की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर, और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरे बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस है।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है।
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है, बहुत
0: जी
1: भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं।

0: रहते हैं सिटी में।
1: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी।
0: ये गीत सुना दीजिए, अच्छे सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
1: पूनम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा, और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादों ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन माँ का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।

0: ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था। सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया? आखिर कौन था उसके साथ? उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली,

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे, ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे।

निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निमिष को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातों नहीं हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने ये तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने

निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

0: वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया।
1: क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना,
0: स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
2: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है, मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती। बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा, प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की। कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध। कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेंत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
2: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है, स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा।
0: उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे

प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है? अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इस

उद्धार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत, राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं, इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं, राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब, राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

रिश्तों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।

0: इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुन ले ए महबूब, मेरी दुनिया को तेरे साथ की जरूरत है, मेरी आंखों को तेरी एक नजर का इंतजार, और मेरे दिल को विश्वास है तेरे सहारे का। जब तन्हाइयां मेरा दामन थाम लेंगी तो तेरी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी। जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएंगी तो तेरी मोहब्बत मेरा हौसला बन जाएगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस तेरे दिल में एक छोटी सी जगह मिल जाए, यही मेरा ख्वाब है।

दिल का क्या करूं जो हर पल तुम्हारा ही नाम लेता है। बहुत दिनों से अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी मेरा साथ नहीं देती। पहली बार प्रेम पत्र लिखा है मैंने। अगर मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरे तो इसे नादान दिल की भूल समझकर माफ कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे कि तू बस नाराज ना होना।

जिस राह पर तुम बढ़ोगे उस राह की हर आहट में मुझे ही पाओगे। हमारी जिंदगियां अब दो नहीं रही, एक ही धड़कन की दो सदाएं बन चुकी है। तुम्हारे दिल की हर अनकही बात मेरी नजरें कब की पढ़ चुकी हैं। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। तेरी मोहब्बत ही अब मेरी दास्तां बन गई है।

आज न जाने क्यों ये होठ यूं ही गुनगुनाए जा रहे हैं। दिल में जो राज बरसों छिपा कर रखा था, लगता है अब आंखें उसे ही बयां कर देंगी। डर ये है कि कहीं मेरी मुस्कान

जब भी बदरा घेर आते हैं, दिल में एक गड़गड़ाहट सी होती है। बिजली की हर चमक मेरे दिल को और बेचैन कर जाती है। ऐसे मौसम में दिल कहता है, काश साजन की बाहों का सहारा मिल जाए। फिर ना बरसात की बूंदों का डर, ना गरजते बादलों का, उसे एक पल में सारी दुनिया सिमट जाए। बस धड़कनों की सरगम हो, बारिश की रुंझुन हो और साजन का साथ। शायद मोहब्बत का सबसे हसीन मौसम वही होता है जब बरसात बाहर भी बरस रही हो और दिल के अंदर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम भाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू प्रेम पूजा

0: दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गाँव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गाँव की सफाई में भाग लेता है। उस गाँव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गाँव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गाँव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गाँव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार।

0: बार पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है?
1: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
2: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: हाँ, 2000 साल पहले।
2: नानी माँ?
4: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
4: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
4: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
4: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
3: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
4: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
3: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
4: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
4: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो

0: पोस्टर्स का है अनोखा मेल। टिम टिम
1: शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए, मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने

0: पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
1: मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।

0: वृक्ष?
1: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
1: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख? अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन

मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion Passepartout.

0: and quickly jumped off before the train stopped entirely.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सबक, ग्राम हकापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तंभ, जिला गंजाम। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणीनकु अनुरोध, समस्त प्रधानमंत्री फसल बीमा करन्तु।
2: फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करन्तु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केन्द्र CSC को जोगाजोग करन्तु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444।

0: जेट समर्सिबल मोनोब्लॉक आउ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची होते सुविधा
2: जानिनो किहो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
3: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
1: ताला जीबा ना की कहउचो
2: चलो
4: परे परे कथाचित्र नागभाष कंठदान करछन्ती अखय महांती एवं तृप्ति।

0: हाँ भाई क्या रे चालो हो
1: खोरा पानी पवनो सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा ना टिके फिटे की कुहो
1: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची होते सुविधा
1: जानि न किहो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अग्रवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीवा ना की कहजो
1: चलो
3: प्रिय टीवी नदन ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रो बिजुली उपभोक्ता गण ध्यान दियंतु बिजुली सेवा रे सुविधा पाई टीपीएन

0: ଶୁଣିଲେ ଗୀତଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ
1: ସମଝି ଯାତି ହେଲ୍ପ ଆପକୁ ସହି ଦିଶା ଦି ଯାତି ଆପ ଅକେଲେ ନହିଁ ହେ ମଦଦ ବସ୍ ଏକ କଲ୍ ଦୂର ହେ क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
5: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने

0: ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्में के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि

0: एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
5: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाश।

0: आशा भोसले की आवाज में हमसाया फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत, शिवन रिजवी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, आपके लिए।
1: कौन है जो सब

0: झुक गया आसमां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

आशा भोसले की आवाज में नरम गरम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और कार्यक्रम का नाम है आपके लिए।

तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। संगीत का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जानी मानी शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है।

और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊंघते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

60 के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: कहां तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।
0: आहा, आई मिलन की बेला देखो आई बनके।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार के बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई

0: प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतील शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।
1: कभी मंजिल भी मिल जाएगी,

0: छूलूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का
1: जी। ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी, और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे. ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

1973 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया, जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं पहाड़ों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

जी ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई, जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था, जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जी ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

पुत्र ठारु उत्कोष ग्रहण करी कश्यप चली गले धनंतरी चली गले। आज सप्तम दिवस भागवत सर्प माने एने बाहरी चंती जाई पहुंची गले। ए द्वारी हट छाड़ी दे हिमाद्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान

0: है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡିଓ କଟରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:05। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6:05 ପ୍ରଚାର କରିବ ଭକ୍ତି ସଂଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ସକାଳ 7:25 ସାନ୍ତାଳୀ ଆଖଡ଼ା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶୁଣିପାରିବେ। ସକାଳ 8:15 ଦିନ 12 ଝୁମର ଗୀତ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭକ୍ତି ଗୀତ, 6:15 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ, 6:30 ସୂଚନା ସମ୍ବାଦ, ରାତି 7 ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ, ରାତି 8 କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ବିଜ୍ଞାନବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ରାତି 8:30। ଏ ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ।